जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है 107 FM रेनबो पर, और लेकर आ गई है नॉन स्टॉप गपशप। और नॉन स्टॉप गपशप में आज हम क्या गपशप करने वाले हैं वो तो बताएंगे, लेकिन पहले एक गाने के बाद। और आपकी दोस्त सविता का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।

मैं तो दोस्तों कहूंगी कि यू आर माई सोनिया। बिल्कुल, यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमसे बातें करने लगते हैं तो सच में दिल हमारा बागवां हो जाता है और उस दिन का दिन बन जाता है। दोस्तों, FM रेनबो 107 पर आपकी दोस्त सविता फिर से एक बार स्वागत करती है आप सभी का नॉन स्टॉप गपशप पर। और आज की यदि अखबार की खास सुर्खी हम आपके लिए लेकर आए तो वो है, अब मालगाड़ियाँ भी भरेंगी उड़ान। तो आप सोच रहे हैं क्या मालगाड़ियाँ उड़ने लगेंगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उनकी रफ्तार उड़ने जैसी हो जाएगी। बिल्कुल बात यही है कि रेलवे का उद्देश्य है मालगाड़ियों को इतना तेज़ बनाना कि आने वाले समय में उनकी गति कई पैसेंजर ट्रेनों के बराबर या उससे अधिक हो सके। मालगाड़ियों की मौजूदा रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के अनुसार है और कुछ वर्ष पहले मालगाड़ियों की औसत गति केवल 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लगातार सुधारों के बाद यह बढ़कर 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है। रेलवे का अगला लक्ष्य फ्रंट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों की औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा ले जाने की है। भविष्य में इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने वाली योजना है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और नए डिज़ाइन वाले माल डिब्बों की को इस्तेमाल किया जाएगा और अधिक गति के साथ सुरक्षित संचालन में मदद से इसको ठीक करेंगे। तो आप सोच रहे थे कि मालगाड़ियाँ उड़ेंगी? बिल्कुल दोस्तों, उनकी रफ्तार ऐसी होगी कि जो उड़ने जैसी ही होगी। तो धीरे धीरे हमारी जो पैसेंजर ट्रेन से वो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जो आने वाली है, जो शुरू भी हो चुकी है अभी एक बुलेट ट्रेन, तो आगे जो मालगाड़ियों की उड़ान भरने वाली है वो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। और आज हम आपके साथ क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों 2213-1341 पर। लेकिन टॉपिक मैं बताने वाली हूँ एक गीत के बाद।

0: जी हाँ, हम जानते हैं कि आपका दिल बेचैन है ये जानने के लिए कि आज हम नॉनस्टॉप गपशप पर क्या बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपकी बेचैनी को थोड़े से चंद सेकंड और बढ़ा देती हूँ और आज के दिन के सेगमेंट की तरफ लेकर चलती हूँ।
1: आज के दिन,
0: तो दोस्तों आज के दिन कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आपके साथ साझा करने हैं। 10 जून का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। 1190 में तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान इसी दिन पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक प्रथम 12 वारोसा की सालेफ नदी पार करते समय दुखद रूप से डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना का

0: धर्मयुद्ध के परिणाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1692 में सलीम डायन परीक्षणों में पहली शिकार बिजरेट विशप को जादू टोना के आरोप में फांसी दे दी गई और इसके अलावा 10 जून 1752 में अपना प्रसिद्ध पतंग प्रयोग किया गया था। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताएं कि 10 जून 1752 को अपना जो प्रसिद्ध पतंग प्रयोग किया गया था जिससे बिजली की छड़ का आविष्कार हुआ और बिजली के बारे में हमारी समझ में प्रगति हुई थी। इसके अलावा ये दिन 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना की याद में दिलाता है। 10 जून को घटित घटनाओं की विविधता और प्रभाव को दर्शाती ये घटनाएं इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों आज के दिन खास दिन भी मनाया जाता है, बॉल पॉइंट पेन दिवस। यह दिन बॉल पॉइंट पेन दिवस के आविष्कार की याद में मनाया जाता है और जिसने लेखन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके अलावा राष्ट्रीय आइस टी दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्मी के महीनों में एक प्रमुख पेय के रूप में जानी जाने वाली आइस टी के ताजगी भरे स्वाद का आनंद लेने के लिए और उसकी सराहना के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आज के दिन ये कुछ खास तथ्य।
1: आज के दिन
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिलहाल आपकी उस बेचैनी को थोड़ा सा दूर कर देते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और हम नॉन स्टॉप गपशप में अपनी बात कहते हुए आपकी बात भी सुन सकें। तो दोस्तों आज के दिन मैं खास बात कुछ ये करना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे दिन आते हैं जब आपके हाथों असफलता लगती है, आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कई बार उसमें हम जो रिज़ल्ट हमको मिलने होते हैं वो रिज़ल्ट हमको नहीं मिलते तो हम टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसा मौका हम सब की ज़िंदगी में आता है लेकिन वो कौन सा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसकी एक लाइन मैजिकल लाइंस हो जाती हैं, मैजिकल पंक्तियां यानी जादुई पंक्तियां बन जाती हैं। जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है, जिसने आपको यदि कुछ थोड़ा सा भी समझा दिया तो वो क्या है, वो कौन सा है, ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एफएम रेनबो 107 पर मैं हूँ आपके साथ नॉन स्टॉप गपशप में सविता और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। एक बार मैं आपको फ़ोन नंबर बता देती हूँ 2213-1341 पर और जुड़िए, देखते हैं कितनी बेचैन हो के आप भी बेचैन हैं, मैं भी बेचैन हूँ आपसे बात करने के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी हमारी बेचैनी अंदर ही अंदर हमको खाने लगती है और हमारा कोई ऐसा व्यक्ति हमारी ज़िंदगी के, हमारे दिल के इतने करीब होता है जिसके कि थोड़े से कुछ शब्द ही हमारे अंदर जादू असर कर देते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, ये हमारी पॉजिटिव सोच को और अधिक मजबूत बना देते हैं, जो व्यक्ति के मन, जीवन और रिश्तों में चमत्कारी बदलाव ले आते हैं और उनको समझने में जीवन में शांति मिलती है, सफलता होती है। ऐसा हमारी लाइफ में कई बार होता है। तो आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो क्या कहते हैं देखते हैं। हेलो,
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में और नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते,
0: बताइए कैसे हैं आप।
1: अच्छा है।
0: अच्छा है,
1: थोड़ी गर्मी है इसलिए एक तो असुविधा होता है।
0: जी मैं ये पूछने ही वाली थी कि गर्मी कैसी लग रही है। बताइए क्या कहना अच्छा। चाहते हैं।
1: कहना चाहता हूँ, हम तो वो जो काम हमारा जो काम है
0: हाँ?
1: वो थोड़ा दिमाग का काम है, तो हम कुछ

0: मैंने मैंने समझ में नहीं पता था उसके साथ मैंने मैंने हम जाता है। अभी वो था वो उसका थोड़ा बड़ा सा वयस हो गया, उसके साथ हम हेल्प कर लेता है।
1: किसका काम है आपका?
0: हम तो इंजीनियरिंग लाइन का काम है, ड्राइंग ड्राइंग वगैरह वगैरह।
1: अच्छा, तो किसका बीमा का काम है?
0: हाँ,
1: आप क्या कहना चाह रहे हैं?
0: हाँ, हमको उनका काम है ना, थोड़ी दिमाग का काम है।
1: ओके, दिमाग का काम है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप काफी परेशान हो गए और आपकी
0: माने सुनिए ना, ड्राइंग माने देकर चला गया पार्टी, माने हम ले लेता है लेकिन माने माने माने देखने से माने बहुत माने दिमाग का काम है। हम उसका साथ जाएगा तब उसके साथ जाऊंगा, वो बता देगा ना ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे कौन।
1: तो फिर कौन घर में या कोई बाहर में ऐसा व्यक्ति है जिससे कि आपको थोड़ी सी बात करके थोड़ी आपकी टेंशन कम होती है?
0: हाँ, हम तो गाना सुन के टेंशन तो कम होता है।
1: अच्छा, तो संगीत आपके जो काम को बिल्कुल
0: हमको
1: आपको रिलैक्सेशन देता है। जी, शुक्रिया।
0: हाँ ठीक है।
1: हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
0: हाँ, हम बोलता है संगीत ऐसा माने चीज है वो माने कोई माने असुख विसुख माने थोड़ी कम कर देता है।
1: बिल्कुल। तो अरूप जी, आप हमारे साथ मिले जुड़े, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। तो हमारे साथ अरूप जी जुड़े थे और उन्होंने कहा कि संगीत उनकी एक मेंटल थेरेपी है जो कि उन्हें आराम देती है, सुकून देती है, शांति देती है और वो अपने काम में फिर से जुड़ जाते हैं। यदि कुछ ऐसा होता है तो रिलैक्सेशन एक म्यूज़िक है उनका। बिल्कुल सच कहा उन्होंने, क्योंकि म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। एक और दोस्त जुड़ चुके हैं, देखिए वो क्या कहते हैं, मैं उनको डायरेक्ट कॉल में लेती हूँ। हेलो, हेलो
2: जी दीदी, प्रणाम।
1: प्रणाम, आप कौन? पारस पंडित जी?
2: जी जी जी।
1: देखिए मैं आपको पहचान गई।
2: जरूर।
1: बताइए कैसे हैं?
2: एकदम ठीक है, आप बोलिए कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, आप अब ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हम आपको याद नहीं रखते, हम भी याद रखते हैं।
2: और हम भी आप लोग को याद करते हैं, तभी तो साथ ही साथ आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: आपका आवाज रानी मुखर्जी की तरह सुनते ही आ जाते हैं।
1: अच्छा, चलिए चलिए, ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है बड़ा। और आप इस तरह
2: नाश्ता वास्ता किए?
1: हम हाँ, नाश्ता वास्ता किए, चाय पी करके तब स्टूडियो में बैठे हैं।
2: अच्छा अच्छा, आप तो सुबह से प्रोग्राम कर रही हैं।
1: जी, तो जी। आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम?
2: जी जी जरूर, आपका तो प्रोग्राम एंजॉय करते ही है।
1: अच्छा,
2: आप लोग का इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम होता है, इतना अच्छा अच्छा जानकारियां देती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब समय लगे ही रहते हैं
1: जी,
2: गोल्ड में जाते तो गोल्ड में, रेनबो में तो रेनबो में,
1: जी
2: दोनों जगह ही शिफ्ट होते रहते हैं।
1: चलिए, अच्छा है आपको म्यूजिक से एक, जैसा कि अभी पहले अरूप जी ने कहा कि उन्हें एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आता है कि जब आप बहुत परेशान हैं, निराश हैं, बेचैन हैं, तो कौन व्यक्ति आपकी लाइफ में जो जिसके शब्द आपको सुकून देते हैं?
2: तो सबसे पहले तो घर परिवार के ही लोग हैं, उसके बाद आप लोग हैं, रेडियो है, म्यूजिक है, और आप लोग की अच्छी अच्छी बातें, जानकारी भरी बातें अच्छी लगती है।
1: जी, तो आपने हम लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आप लोग इतना मेहनत से प्रोग्राम करती हैं।
1: जी, तो आप सुनते हैं तभी हम सुना पाते
2: हैं। हम लोग भी मेहनत से सुनते हैं।
1: बिल्कुल, वही तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं।
2: जरूर जरूर,
1: तो शुक्रिया।
2: एक परिवार के तरह।
1: जी, तो पारस पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद दीदी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका घर परिवार सब सुखी रहे।
1: जी
2: जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे अभी पारस पंडित जी, और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ हम भी कहीं कहीं उनके जीवन में थोड़ा सा एक निराशा से उन्हें बाहर ले आते हैं, उनको एक सकारात्मक ताकि ओर ले जाते हैं, एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। और ये तो सच है कि संगीत तो नई ऊर्जा से लोगों के अंदर में जान फूंक

देता है। कहते हैं ना कि एक मंत्र की तरह काम करता है संगीत। तो आइए, संगीत की जब बात हो रही है तो अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में सुनते हैं पहले एक गीत, और उसके बाद हमारे जो दोस्त जुड़ेंगे उनसे बातें करेंगे।

0: वह तुम्हारा रास्ता बनकर रहेगा, सच कहूँ तो वह खुदा बनकर रहेगा। जिंदगी में सिर्फ उससे प्यार करना जिंदगी की जो दवा बनकर रहेगा। दोस्तों, एफएम रेनबो 107 पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, और बात हम कर रहे हैं तनाव कम करने या किसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए तब आप खुद से एक बात कह सकते हैं। जी हाँ, वो बात ये है कि जो होगा देखा जाएगा। बस ये चिंता, ये जो आपके मन में भार लेकर के भरी हुई है, ये वाक्य आपकी चिंता को हटा देगा और परमात्मा या प्रकृति पर जो भरोसा है वो करने में मदद करेगा। चलिए, हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं लेकिन उनको थोड़ा सा इंतजार कराते हैं और कोलकाता कल्चर की तरफ बढ़ते हैं।
1: कोलकाता कल्चर।
0: तो झटपट आपको बता देते हैं कि 10 जून को कोलकाता में होने वाले प्रमुख कार्यक्रम है सांस्कृतिक और लाइव संगीत है AMPM कोलकाता में, शाम 8:30 बजे SHI लाइव का आयोजन है जो दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत और पॉप का मिश्रण पेश करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक व्याख्यान और संस्कृति है विनोदनी थिएटर शोभा बाजार में 7:00 बजे, जाने माने अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स का व्याख्यान कार्यक्रम है। इसके अलावा सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनियां हैं कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में जलवायु परिवर्तन पर फोटोग्राफी प्रदर्शनी और हिंदी साहित्य से जुड़ी साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन जारी रहेगा। तो ये था
1: कोलकाता कल्चर।
0: और फिलहाल हम लेंगे हमारे एक दोस्त को जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, आप बताइए कौन बोल रहे हैं?
2: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: श्याम कुमार चंचल जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों के बाद आपने तशरीफ लेकर के आए हैं
2: जी। सविता जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से आपका सभी परिवार सुखी हो, अच्छा हो, तंदुरुस्त रहे, सब अच्छे रहे, यही प्रार्थना करता हूँ
0: जी। बस मुझे आप सभी की जो दुआएं मिलती है ना, उसी से मैं मस्त रहती हूँ, पता है।
2: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए क्या कहना चाहते हैं?
2: मैं कहना चाहता हूँ सविता जी, कि जब मुझे कोई चिंता या परेशानी मुझे घिरती है तो मैं ईश्वर के शरण में चला जाता हूँ। मंदिर जाता हूँ या घर के मंदिर में ही शांत होकर प्रार्थना करता हूँ, बस यही मेरा सबसे बड़ा एक मंत्र है। और अंत समय में थोड़े गीतों का भी दीवाना हूँ, गीत भी सुनता हूँ और आनंद लेता हूँ, यही मेरा दिनचर्या है।
0: बढ़िया। तो चंचल जी, हाँ, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो हमने आपने हमको कॉल ले लिया, हमारा हमसे बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपका दिन शुभ हो। तो नरेंद्र चंचल जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि वो भगवान की शरण में चले जाते हैं और गीतों का सहारा लेते हैं। तो देखिए, एक बात बड़ी कॉमन है कि जो म्यूज़िक है वो कितना सभी की ज़िंदगी में शांति लाता है, और आप सब तरफ से जब निराश हो जाते हैं और भगवान अपनी अपनी आस्था की शरण में जाते हैं तो वहाँ भी आपको सुकून मिलता है, संतोष मिलता है। ये बात मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के इस बात से एग्री करेंगे। और हम अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं एक और गाने की तरफ, और जो जादुई सेंटेंस है या जादुई शब्द है आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा या आपके दोस्त के द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा जो आपके अंदर पॉजिटिविटी की का संचार करता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। फिलहाल अलका याग्निक को सुनेंगे एक गीत में।

0: दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और दोस्त, तो पहले हम उनको ऑन एयर लेते हैं फिर सुनवाएंगे ये गीत। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नन्ने बोल रहा हूँ,
0: पाटनगर से। नन्ने जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा जी।
0: अच्छे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: आज तेरे टॉपिक बहुत अच्छा लाई है
0: जी।
1: टॉपिक की तरफ बात करें तो हम अफसोस होता है, इंसान बोलता है तन्हा में रहते हैं, जो आकाश में सुनते कोई दिन तन्हा रह सकता है
0: जी।
1: और इंसान का इतना सारा ढेर सारा काम है, कोई भी काम कर लेगा ना इंसान का, वही काम में फुर्सत दे देगा, कहाँ तन्हा रहेगा। हर इंसान थोड़ा काम धन का चक्कर में रहेगा ना, कोई दिन तन्हा ही नहीं रहेगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: एक तो इंसान तीन चार किस्म का काम कर लेगा ना, उसको फुर्सत कहाँ मिलेगा कहाँ तना रहने का।
0: सही बोले एकदम, जो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और
1: सुनता हूँ ना, हमको तो तन्हा कोई टाइम रहूंगा भी नहीं
0: जी। तो नन्हे जी आप आकाशवाणी से एक अपने आप को मतलब एक जोश पाते हैं, एक उमंग पाते हैं, सुकून पाते हैं, तो ये हमें सुन करके बड़ा अच्छा लगा।
1: एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक आप बचपन से सुनता हूँ ना, बचपन से एंजॉय करता हूँ।
0: चलिए आगे भी आप ऐसे ही सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, इसकी हम दुआ करते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं। ठीक है नन्ने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नन्ने जी जुड़े और फिलहाल हम गीत सुनवाएंगे, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें।

0: जी हाँ दोस्तों, धूप होंगी, बारिशें होती रहेंगी, आदमी की कोशिशें होती रहेंगी, चाहने वाले नया कब कर न गुजरे, कब न थी बंदिशें होती रहेंगी। बढ़ते एक और हमारे दोस्त की तरफ जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम है शुभोजित, मैं बेलगरिया से बात कर रहा हूँ।
0: शुभोजित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा, तो हमको एक नया कॉलर मिला।
1: हिंदी के लिए माफ कर दीजिएगा।
0: नहीं नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और हमारे पहले कॉलर नए कॉलर हैं, इसके लिए भी आपका हम मतलब शुक्रगुजार हैं।
1: आप इतने अच्छे से गाना प्ले कर रहे हैं कि मैं मजबूरन फोन किया।
0: ओके।
1: मैं सुन रहा था ऐसा, तो मुझे बोलना है कि इस टॉपिक में कि अभी के जो दौड़ भाग वाली जिंदगी है, इसमें चंद सेकंड भी थोड़ा बैठो, थोड़ा रिलैक्स करो, वो भी नहीं होता है। और मेरी जिंदगी में मेरा भतीजा है, वो अभी 9 साल का है, तो जब उसको मैं देखता हूँ, जब उससे थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ फोन पे ज्यादातर, क्योंकि मैं काम पे चला जाता हूँ, तो मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। जब भी मैं उदास रहता हूँ या फिर कुछ भी कारण में, स्ट्रेस तो होता ही है जिंदगी में, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं अभी जिंदगी में जिसका कोई स्ट्रेस नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो बच्चों में भी स्ट्रेस आ गया है, जो पहले के जमाने में तो था ही नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। लेकिन अभी के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, स्टूडेंट भी इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो हमको लगता है कि जैसे कि अभी का वो माहौल ही है नहीं जहाँ पर पहले नहीं होता था, कि पेरेंट्स लोग सब बोल देते कि देखो सारा दिन जहां भी रहो लेकिन रात के टाइम में एक साथ खाना खाओ।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वो भी नहीं होता है क्योंकि हर एक का टाइम अलग अलग है। जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो तो पहले ही खा के चले जाते हैं और जो बाकी लोग रह जाते, तो एक साथ बैठ के जो थोड़ी बहुत बात करो वो भी नहीं होता है। और जब से वो मोबाइल आ चुका है तो वो तो सब कुछ चला जाता है, वो रील पे और वो वीडियोस पे। तो ये जो अलग से इवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व तो करेगा दुनिया, ये तो दुनिया का दस्तूर है, लेकिन वहां से भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए हम सबको। अब क्यों नहीं निकलता है, इसका भी रीजन यही है कि हम लोग का डिमांड इतना बढ़ जाता है हर दिन कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब आपका वो डिमांड पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट डिमांड आ जाएगा। तो ये जो हम दौड़ते हैं, भागते हैं, ये भागना तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग को ये सोचना है कि वो भाग वाली जो रेस है उसमें से कहां से टाइम निकाल के थोड़ा बहुत टाइम अपने फैमिलीज को दो, अपने फ्रेंड्स को दो।
0: ये होता है बिल्कुल। आपने बड़ी ही मतलब एक इवेल्यूएट करके, कहते हैं ना कि मूल्यांकन करके चीज़ों को बताया है और सार्थक बात कही है कि हम समय होते हुए भी किसी को समय नहीं दे पा रहे। ये मतलब एक चूहा दौड़ जिसे रैट रेस कहते हैं।
1: मैडम ये तो मेरे जिंदगी में इतना होता है कि पहले जैसे मैं कॉलेज में था
0: जी,
1: तो एक टाइम था कि सैटरडे या संडे दोस्तों के साथ जो हम लोग बंगालीज जो फेमस है आटा
0: जी,
1: जो रॉक का आटा बोलते हैं ना, रॉक का आटा, तो वो तो चला ही गया, कहाँ अड्डा का जगह ही नहीं है। और उससे भी ज्यादा है कि सब लोग अलग अलग जगह में चले गए हैं, तो जो मीटिंग पॉइंट था कि हाँ यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे और बात करेंगे, ढेर सारी बातें। और आटा ऐसा चीज है हम लोग के बंगालीज में या जो कोलकाता में रहते हैं, सिर्फ बंगालीज नहीं तो नॉन बंगाली सब एक साथ, तो उसमें जो क्रिएटिव एस्पेक्ट निकलता है एक आटा में, जो डिस्कशन होते हैं वो तो करने का मौका ही नहीं होता है, क्योंकि और हमको तो ऐसा हो गया कि महीने में शायद या डेढ़ महीने में एक बार दिखने को मिलते हैं, मतलब मीटिंग प्लेस होता है।
0: सही बात।
1: चेंजेस को तो हम सबका एक्सपीरियंस है इस मामले
0: जी, इसीलिए मैंने सुबह का जो प्रोग्राम था एफएम गोल्ड में ये कहा था कि आप कभी कभी अपने जिन लोगों को जानते हैं उनको कभी कभी फोन करके एटलीस्ट उनसे कांटेक्ट करते रहें, जिससे कि ना आप अकेले फील करें ना वो अकेले फील करें। तो आप हमारे साथ जुड़े शुभजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए।
0: नहीं नहीं ठीक है, फिर से मिलेंगे जी। ओके।
1: हाँ मैम, शुक्रिया।
0: शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे साथ शुभजीत जुड़े और उन्होंने बड़ी ही बात को आकलन करते हुए सही ढंग से बात को पिरोया शब्दों में, और हिंदी वो कहते हैं कि मैं अच्छी नहीं बोल पाता, लेकिन उन्होंने अच्छी ही हिंदी बोली। और कार्यक्रम का हम जो है अंतिम दौर पर आ चुके हैं, बिल्कुल अब एकदम वक्त नहीं रहा, अंतिम गीत ही पेश करने का वक्त आ चुका है। तो बस इतना ही चलते चलते कहूँगी कि आदमी कैसे रहेगा आदमी फिर, पूरी जो सब ख्वाहिशें होती रहेंगी। तो दोस्तों, हमारी ख्वाहिशों को थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ी सी ज़रूरतों को अपने आप में समेट लें, तो मुझे लगता है ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। और अंतिम गीत सुनवाते सुनवाते आपकी दोस्त सविता फिलहाल आपसे चाहेगी इजाज़त नॉन स्टॉप गपशप में 107 FM रेनबो पर। मैं थी सविता, और हाँ, 12 तारीख को यानी कल के बाद दूसरे ही दिन मैं आपके साथ फिर से मिलने वाली हूँ। तो बस मुझे तो इंतज़ार रहेगा, आपको रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपका दिन अच्छा गुजरे ऐसी ही दुआ है। और कहीं ज़िंदगी में कहीं निराशा है तो भूल जाइए ना, जो होगा सो होने दीजिए।

जा बुरा करते हाथ, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

दाढ़ी अच्छ अबुनी पहाड़ी अच्छ अबुनी अबुनी पहाड़ी अच्छ अबुनी अबुनी।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
2: বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in এ।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: चार मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त मैं सुजेश्मिता आप सबके साथ और तीन कतर का कार्यक्रम में सबसे पहले आज परियोजना प्रस्तुति में हम बात करेंगे जिस विषय पर वो है विमेन अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्थायी आजीविका से का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में संगठित किया जाता है। जब महिलाएं समूह बनाकर बचत और ऋण की व्यवस्था करती हैं तो उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय और शुरू करने में सहायता मिलती है। ये समूह न केवल आर्थिक सहयोग देता है बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण भी दी जाती है, जैसे हस्तशिल्प का जो है, इसके अलावा पशुपालन, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित कार्य आदि। इन सभी चीज़ों की जो है उन्हें प्रशिक्षण दी जाती है। इसमें वे अपने गांव में ही रोजगार का अवसर पैदा कर सकती हैं और इसके साथ ही उन्हें बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़कर सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपना व्यवसाय आगे भी बढ़ा सकती हैं। कहा जा सकता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नई आशा और अवसर का द्वार खोलती है। यह योजना उन्हें आत्मविश्वास, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: 3:07 और दिन का तड़का कार्यक्रम में अब हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत जो आपके और मेरे दिल के करीब है और आज के इस दोपहर को मैटनी को थोड़ा सा तड़का लगाते हुए सुनते हैं इस गीत को।

सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है दीन कदर का। मैं सुचेष्मिता आप सबके साथ। और दोपहर के इस मैटिनी शो में जहां आपको थोड़ा थोड़ा सा शायद नींद आ रहा हो या फिर लंच के बाद थोड़ी सी आलस, वहां जो है गानों का दरका आपके मूड को रिफ्रेश कर देता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगला सा गाना सुनने के लिए आप जो है बेचैन है। तो रुक करते हैं अगले गीत की ओर। कार्यक्रम तीन का दरका वन सेवन IRFM रेनबो, दिल से दिल तक पर बने रहेंगे पूरे 3:30 बजे तक साथ में। और 3:30 बजे से सुनेंगे एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुना आपने इस गीत को, लेकिन आई तो लव स्टोरीज। चाहे कहानी कैसी भी हो, मुझे कहानियां सुनना पसंद है। वैसे आपको कैसे लगती है कहानी सुनना? अब कहानी सुनना अच्छा लगता हो या ना हो, गाने सुनना हम सबको पसंद है, ये तो मुझे आइडिया है। तो अगला गीत बिल्कुल तैयार, चलते हैं, रुक करते हैं अगले गीत की ओर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
0: फिर क्या होता है,
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
2: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्ष

0: बच्चों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरू तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्य

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें, और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे

0: कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
0: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओह,
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
1: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
1: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
1: हैं। हाँ, क्यों नहीं।
0: कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
1: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: साथ साथ।

रेडियो की घड़ी बता रही है 7:05। मैं शुचेष्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम छायालोक, और छायालोक के अंदर का आज जो है वेडनेसडे, वेडनेसडे को हम बातें करते हैं हम साथ साथ में जोड़ियों की। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन कुछ जोड़ियां जो है हम खुद यहाँ अपने आप खुद बनाते हैं, है ना। कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी पार्टनर के साथ, या फिर कभी एक प्यारा सा म्यूजिकल जोड़ी, है ना। आज के हम साथ साथ में हम लेकर आए हैं हिंदी फिल्म संगीत की 3 ऐसी आवाजें जिन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि करोड़ों लोगों के भावनाओं को सुर दिया। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी की। उनके गीत सुनवाऊंगी आपको पहले 1 घंटे। दूसरे 1 घंटे यानी 8 से 9 बजे के वक्त में मैं आपको सुनवाऊंगी ऐसे गीत जो मोहम्मद रफ़ी ने आशा भोसले के साथ जो है गाए। तो रुक करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ऐसे कई नाम हैं जो बिना लिखे कभी ये लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती। अगर ऐसे नामों में नाम निकाला जाए तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का नाम कोई

छोड़ नहीं सकता, कोई भूल नहीं सकता। एक तरफ लता जी की मधुर कोमल और भावपूर्ण आवाज और दूसरी तरफ रफी साहब की बहुमुखी दिल को छू लेने वाली गायकी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: हम साथ साथ

जो है रुख करते हैं मौसम के हाल की ओर, क्योंकि आया है एक खबर, वो ये कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर ये जो है मौसम का ये जो हाल है ये हमें मिला है 6:40 पर, मतलब 6:30 के बाद से अगले 2-3 घंटे के दौरान हावड़ा, हुगली, कोलकाता, पूर्व मिदनापुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में के कुछ हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम गरज के साथ बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है और साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। और जो है ऐसे वक्त में आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, और अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी छतरी, अपना रेनकोट अपने साथ ले जाएं।

7:40 स्टूडियो की घड़ी में वक्त 107.9 रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम छाया लोग हम साथ साथ। और आज हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। पहले एक घंटे यानी 7 से 8 आप तक पहुंचा रही हूँ गाने जो लता मंगेशकर और रफ़ी के हैं, और फिर 8 से 9 आप तक पहुंचाऊंगी ऐसे गाने जो आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के हैं। लता और रफ़ी ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों युगल गीत गाए हैं, चाहे वो रोमांस के हो, विरह के हो, शरारत के हो या जीवन के दर्शन की। हर भाव को उन्होंने अपने आवाज से जो है जीवंत कर दिया। कहा जाता है कि दोनों की गायकी की सबसे खूबी बात जो है, सबसे बड़ी खूबी जो है, वो उनकी सादगी थी। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावटीपन, सिर्फ सुरों के प्रति समर्पण।

7:54 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, और जो है इसी के साथ अगले गीत को सुनते सुनते हम रुक करेंगे अगले पड़ाव की ओर, यानी कि एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक के उस पार रहूँगी मैं आप सबके साथ लेकर कार्यक्रम चालू, और हम साथ साथ में तब हम बात करेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। सुनते रहिए, साथ रहिए, और जाते जाते ब्रेक पे जाते जाते छोड़ जाऊँगी आपको इस गीत के साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ

11:11 स्टूडियो की घड़ी में वक्त है और हिंदी संगीत में दुनिया में जो है जोड़ियां ऐसी हैं जो हर रंग के, हर भावना के, हर तरह के गीत इन्होंने गाया। वो जोड़ी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी। अगर लता रफ़ी की जोड़ी को मधुरता और भावनाओं का प्रतीक कहा जा सकता है, तो आशा रफ़ी की जोड़ी को संगीत का सबसे रंगीन, चंचल और प्रयोगधर्मी अध्याय कहा जा सकता है। आशा भोसले ने अपने करियर में यह साबित कर दिया कि एक गायक की असली ताकत उसकी बहुमुखी प्रतिभा होती है। कभी क्लब सॉन्ग्स, कभी कसरत, कभी लोक धुन, कभी रोमांटिक गीत, तो कभी मस्ती भरे गाने,

की आवाज में एक ऐसी चंचलता थी जो गीतों को जीवंत बना देती थी। और जब आशा और रफी एक साथ आए तो इन दोनों कलाकारों ने गीतों को अक्सर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस कराई पहुंचाई। कहीं शरारत, कहीं मुस्कुराहट, कहीं प्रेम तो कहीं मासूमियत। उनकी आवाजों का मेला एक ऐसा था कि गीत सुनते समय दृश्य कहीं आंखों में आ जाता था, लगता था बस हमारे सामने ही

बातें हो रही हैं आशा और रवि की। 1960 और 70 का दशक, सुनहरा दौर, वो वक्त जब समता फिल्मी संगीत में नई नई दिशाओं में आगे बढ़ने का, पश्चिमी संगीत का प्रभाव बढ़ रहा था, नए वाद्य यंत्र आ रहे थे बॉलीवुड में और संगीतकार नए प्रयोग कर रहे थे। ऐसे दौर में आशा जी ने हर बदलाव को अपनाया और अपनी गायकी को समय के साथ ढाला। यही कारण है कि वो नई पीढ़ियों की पसंद बन गई। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी कि वो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो उससे सीखना कभी नहीं छोड़ा, नई चुनौतियों को स्वीकार करना और खुद को लगातार बेहतर बनाना उनकी सफलता का रास्ता बना।

8:33 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। और कहते हैं ना दोस्तों कि जब तक आप परिश्रम नहीं करते हैं तब तक सफलता की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद रफ़ी ने भी अपने सफलता के लिए बेहद संघर्ष किया। उन्होंने विनम्रता और मेहनत के दम पर अपनी इस मुकाम को हासिल किया।

आज भी उन्हें भारतीय संगीत का सबसे बहुमुखी गायक माना जाता है। कुछ आवाजें समय के साथ बूढ़ी नहीं होती, ये यादों की तरह हमारे साथ चलती हैं। रफ़ी की आवाज़, लता की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़, लता जी की आवाज़, आशा जी की आवाज़, वैसी ही मधुर आवाज़ है। ये भारतीय संगीत के ऐसे धरोहर हैं जिसे शब्दों में नहीं समूह सकते हम, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

बातों और गीतों के साथ साथ पहुंच चुके हैं हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, और जो है स्टूडियो की घड़ी कह रही है थोड़ी ही देर में कहना होगा मुझे आप सबको टाटा एंड बाय बाय। 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे थे आप कार्यक्रम छायालोक, और छायालोक में आज वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को हम सुनते हैं हम साथ साथ। जी दोस्तों, हम साथ साथ तय करते हैं आज हम साथ साथ कार्यक्रम का पूरा सफर, और जो है सुनते हैं बेहतरीन जोड़ियों को जो साथ में बेहतरीन है, फिर चाहे वो गर्मी और आम की जोड़ी हो या फिर लता मंगेशकर और रफ़ी की जोड़ी हो या आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी हो। आज हमने बात की, गीत सुने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। तो आज की जोड़ियों का कार्यक्रम हम साथ साथ यही करती हूँ मैं समाप्त। साथ ही हमारा साथ भी अब बस छूटने ही वाला है, लेकिन वादा करती हूँ ऐसे ही किसी कार्यक्रम में दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, साथ रहिए। मैं शुचिश्वता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर, और छोड़ जाऊंगी आपको इस आखिरी गीत के साथ

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: अटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी।
1: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।